आज मिति 2083 साल साउन महिनाको आज 6 गते, तदनुसार इसवीसन 2026 जुलाई 22 तारिक, शक सम्वत्स 1948, नेपाल सम्वत् 1146, दिल्लाथ रुद्र नामक सम्वत्सर, दक्षिणायन वर्ष ऋतु, आज बुधबार।

0: नेपाल अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो एनआरएम 99.1 सबैका लागि सूचना।
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक घमने शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन्। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो।